तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आख बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन।

आखह पढ़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध।

सा सबराई। ऐसे रंगराती सहज की माती, अहनिस पाए समाणी, सुंदर साय स्वरूप विचखण, कही ऐसा सियाणी। सुही

अगम गोचर गलख पारा चिंता करो हमारी जलथल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप।

अगाधे सुभं सर्व भागे सो सर्वानुरागे। त्रिभुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, कि नरकं प्रणास है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैवं सदा है। विभुगत स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है। चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सो नित है, अजात है, अजाद है। चरपट क्षमता प्रसाद सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद। नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विपूते, परमाथं प्रमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विपूते, अनंगी, अनामे, त्रिपंगी, त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी, अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकं श्रीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है। भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुस्नल चिराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी दहिंद है, के राज कर हिंद है, करीमुल कमाल है, के हुस्नल जमाल है, गनीमुल खराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबां हैं, कि साहिब किरां हैं, कि नरकं प्रणास हैं, बहिस्तुल निवास हैं, कि सर्वल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईश है, समस्तल अदीश है, अदेशुल अलेख है, अमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मित्तो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि मित्तो विभूत है, कि मित्तो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मित्तो अपंग है। मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर पर पंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अन पवनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अन शिज अंग आसन, अपंग उपमा पार, गत मितोदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, तिर तर तुरास, अजान वाहो एक सदा हो। ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, आजिज न बात, अनझंज गात, अनरंज बात, अन टुट भंडार, अनठट अपार, आडीठ धर्म, अत तीठ कर्म, अणबरण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद तब प्रसाद, करुणालय है, अर्कालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्ववारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विसंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करणाकृत है, अकृता कृत है, तारणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृतामृत है, अजबा कृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विसंबर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, पवपंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, आकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अमय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तल परणामे समस्तल परणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते करति विनेक रति के माति मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे तारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
ਕੋਵ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਵ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਅਸੁਰ ਕਾ ਕਾਟ ਸਮਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ਦੁਤੇ ਬਾਨ ਸੋ ਦੋ ਅਰ ਕਰ ਕਾਠ ਦਯੋ ਅਸਤੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ਪੁਨਰਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਪੁਹ ਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭੈ ਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹਲੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੁਪਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੂ ਕਰੀਏ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तुम्हें मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो, आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनासरी राग विच शब्द उचारण कीता, आख्या हम आदमी हां एक दमी, दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानस दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरुषा पासों कोई चंगी गल सुन पले ते जे आप बोलना चाहता है तो परमेश्वर की भक्ति कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाएगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिनानू ए चंगे गुण प्राप्त हन भाई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

इथे शिर्क किंवा व्याकरण बारीक भाषा व्याकरणात फुलावून होईल आपल्या भाषा मकरू आणि शुद्ध बोलव आपने स्थान लोकत में आ गए कुछ निरीक्षण जो माया सूचना को दूर करने पर खासे कार्य करने उलट पंख मां फतेह बाबा की

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघां ने पठाणा नूं जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारां पिड़ियां,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथां ते लोथां चढ़ गईयां। गुरु दे सिंघां ने ऐसे हद दिखाए कि गाजियां दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाल पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाल पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघां दे रोकदिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पहुंचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठ्ठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघां नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 23 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलवे ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लितार दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

कबीर जी नू नीच जाति वाला समझ के रामानंद जी उपदेश नहीं सन देंदे। कबीर जी ने पूछा भाई कोई ऐसा समा भी है जदों रामानंद जी लंघदे होण ते मैं उना दे चरणा ते डिग के उपदेश दी याचना करा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। तां किसे ने दस्या भाई अमृत वेले गंगा दा इशनान करन लई बाहर निकलदे हन। आख्या ठीक है, दूजे दिन अमृत वेले जाके उस रस्ते विच लम्मे पै गए जिथों दी रामानंद रोज लंघिया करदे सन, इशनान करदे सन, ते वापस आके फिर अपने निज स्वरूप विच जुड़ जाना। अज रामानंद जी आ रहे हन ते जदों पैर दी तुंब वजी आख्या राम के राम कहो, राम के प्यारे राम कहो, ए सौन दा वक्त नहीं ए जपन दा वक्त है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। बस ओ उपदेश समझ के नाम जपना आरंभ कर दिता ते फिर ऐसा जपिया कि अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को ना सके पहचानी। ऐसा नाम जपिया के अकाल पुरख विच और कबीर जी विच कोई भेद ना रह गया, हर हर जन दोए एक है, बिप विचार किछ ना है, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाए। सो भगत कबीर जी नाम जप के राम दा रूप ही हो गए। इसलिए हजूर कहंदे जे जपना है तो फिर मन करके जप, जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने।

इस माया नू कोई नाल ना ले जा सकया। बाबा माया साथ ना होए, ए पिता जी ये माया साथ नहीं जानी। और हैरानी की गल है कि इसे माया विच सारा संसार मोया हो। इस माया ने सब नू मोह रखिया है, किसी का भी मन माया तो परे नहीं जाता। ते कोई विरला ही इस गल नू बुझदा है, समझदा है। तां पिता जी कहण लगे, नानक तैनू उपदेश देण वास्ते

लिया ही नहीं। वो एक पिता सन और पिता ही पूरे हो गए। वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नो अपना पुत्र समझदे सन और पुत्र ही समझदे रहे। इस तो वध कुछ ना समझ सके। उसी घर विच उन्हां दी भैण बेबे नानकी है तो उसका भी रिश्ता भरा दा, पर वो पीर भी समझ लिए, गुरु भी समझ लिए। उसी नगर विच उस नगर का मालिक है राय बुलार, वो भी गुरु नानक पातशाह नूं रब दा रूप समझदा है, पर मेहता कालू जी नहीं समझ सके, माता जी नहीं समझ सके।

अज कल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पाया सौदागरी करना पाया उस तो वेल नहीं। बेटा तू कि सौदागरी करना पै मैनू तो वेला ही नजर आना और ना तेरिया गल्ला।

नंगे वेखे सन, तन ते कपड़ा नहीं, बुरी हालत। और गुरु साहब तो गए ही इसे करके नहीं, चढ़िया सो दिन धरत लुकाई। जदों बेबे नानकी ने दोनों साहबजादियां नूं अग्गे कीता सी तां गुरु जी ने आख्या सी कि जेकर लाल सब रब दे दुखी दिसण करां की मैं दोहां दुलारिया। इस वेले मैनूं उस वाहिगुरु परमात्मा दे लाल जो इंसान पैदा कीते ने उसके पुत्र ने उसके बच्चे ने यह सब दुखी दिस रहे हैं। बाज गुरु अंधेर है कर दी सुनी लुकाई। बाबा देखे ध्यान धर जल की सब पृथ्वी दिसिया, सारी पृथ्वी जलदी हुई नजर आई। तां फिर चढ़िया सोधन धर तो लुकाई। उन्हां इंसानां नूं दुखी वेख्या सी कारू दे राज विच, भुखी वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह।

जान ही चाहिए नहीं हाथ जोड़े कहने लगा महाराज मन बड़ा भटक गया मन नू चैन नहीं। तो गुरु साहब जी कहने लगे भज जा दौड़ जा समझ ना आए। फिर कहता महाराज मेरे मन नू चैन नहीं। सतगुरु जी फिर कहते हैं तेन आख्या भज जा फिर समझ ना आ रहा। कह लगा महाराज बड़ी आस नाल आए साहब जी कुछ होर गुस्से नाल कहते तेन आख्या भज जा मत्था टेकिया।

ऐसी पाजीजा दौजा रसुजान चल तुरया नहीं दौजे किथे जाने केड़ी मंजिल है केड़ा ठिकाना है

आनंदपुर साहब तो बैठे हैं, पर साडे गरीब लोगों ने किवें साथ लिए, साडे पिंड कोई वैद लगे ने आपे भेर करके वैद नूं भेज दिता, एक चौकी बना दी सुजान चाह जड़ियां बूटियां लिया।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना है, बोलता करता है, सिमरन करता है,

सिर्फ संगता समेत सुजान चाहते इस पिंड वाले चल पे पिंड के लोगों को पता लगा सुजान।

काका, मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल, उनको दवाई दे, ते सुजान चल सोच ले, जे माई नाल जावां

माता सेव कौर मुखिया सी सहदेवान जेड़ा अमृत छकेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उसका पिता ते तुसी उसके माता हो तो आओ। माता सेव कौर की गोद बैठ कलगियां वाले पिता का प्यार

तो उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एकायत जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तैनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

हे जिंदे जितना चिर तू पेके घर विच पाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी जो साहेब अपनी वाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेअंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां तां इन्हां दोनों नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे कि चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतां दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।